0: আমি ভাইকে কি সপিউ না
1: পিউ না লাইছি সো উঠাও হরে
0: হরে গলি মানায়া তুই
1: রিফ্রেশমেন্ট পা নিউট্রিশন মিস
0: জিসো হরে
2: पर्यटकीय नगरी पोखरामा मेट्रो सिटी हस्पिटल प्रणाली सिर्जना चोक पोखराले विभिन्न किसिमका विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरूको उपचार ल्याएको जानकारी गराउँदछौ।
3: हाम्रा सेवाहरू
2: हार्ट जोड्ने, नसा तथा मेरुदण्ड रोग,
3: जनरल सर्जरी, सबै प्रकारका अपरेशन सेवा,
2: मृगौला तथा मूत्र रोग, युरो सर्जरी,
3: पेट, छाती, मुटु, थाइरोइड तथा मधुमेह रोग,
2: न्युरो सर्जरी सेवा,
3: बाल रोग,
2: नाक कान तथा घाँटी रोग,
3: मानसिक तथा स्नायु रोग,
2: प्रसूति तथा स्त्री रोग,
3: छाला, यौन तथा कुष्ठ रोग,
2: नेत्र रोग,
3: दाँत तथा मुख रोग,
2: क्यान्सर रोग, दूरबीन र लेजर प्रविधि प्रयोग गरी गरिने विभिन्न अपरेशनहरू, अत्याधुनिक माइक्रो डिफ्राइडर प्रविधिद्वारा नाक कान तथा घाँटी रोगको अपरेशन, मासिक नियमित खोप सेवा,
3: 24 घण्टा एम्बुलेन्स, इमर्जेन्सी, अत्याधुनिक प्रयोगशाला तथा फार्मेसी सेवा,
2: सुविधा सम्पन्न आईसीयू सेवा,
3: डिजिटल एक्सरे,
2: सिटी स्क्यान सेवा,
3: भिडियो एक्सरे, इको कार्डियोग्राफी,
2: इन्डोस्कोपी, ईसीजी, ईईजी, पीटीए,
3: फिजियोथेरापी, युरोफ्लोमेट्री,
2: केमोथेरापी,
3: सुरक्षित गर्भपतन सेवा,
2: होल बडी चेकअप, हेल्थ प्याकेज,
3: मेट्रो सिटी हस्पिटल प्राली, पोखरा 8 सृजना चोक कास्की,
2: फोन 061-572-648, 572-849।
4: घुट्टु घुट्टु पियो या सिप रमायो,
0: अब घर पियो लाइकिंग, चीज को हरी,
1: गर्मी होइन रिफ्रेशमेन्ट सँगै न्युट्रिसन दिन आयो मौसम।

0: मम्मी गर्मी भाई के चीसो पीना
1: लाई चीसो उठाओ हले
2: हले गर्मी मनाया
1: रिफ्रेशमेंट पाप न्यूट्रिशन मीट
2: चीसो हले
3: सर्वाधिक बिक्री होने ह्युंडई गाड़ी को शोरूम पोखरा में अंतरराष्ट्रीय स्तर तथा पोखरा को प्रतिष्ठित लक्ष्मी ग्रुप द्वारा संचालित शोरूम सेल्स सर्विस स्पेयर पार्ट्स सभी को सेवा सहित एलआई मोटर्स विस्तृत जानकारी को लागि एलआई मोटर्स बुद्ध चौक पोखरा फोन नंबर 061-527-426 537-526

0: বাতসালিয়া পোখরা ক্লিনিক নিউ রোড পোখরা ফার্টিলিটি হোপলাইন 01-597-06-11
1: मम्मी गर्मी भयो के चिसो पिउना
2: पिउनालाई चिसो उठाउ हर्लिक्स
1: हर्लिक्स गर्मीमा नयाँ ट्विस्ट
2: रिफ्रेशमेन्ट बार न्युट्रिसन मिक्स
1: चिसो हर्लिक्स

0: वात्सल्य पोखरा क्लिनिक न्यू रोड पोखरा फर्टिलिटी होपलाइन 01-597-06-11
1: ओहो नाचर बे कति छाबा डिजाइन बे मारेगना खिनानी खनि तोला
2: खनै दिवा नाचर बे रूपाकोट ज्योति सुनचाटी दुकान महेन्द्र पुलाडी तोला
1: ए नै छाबा मारे दुकान पो मोना नै पेसलाई नि च्याबा चुरा रैया औठी हमेला झोका टस सिग्री हार तान चनै तो हो नि जगा मात्र आङी खैमा खैमा समस्या पर्दिर मार चुवल तुई बिस्यानारी बेल्ले छाबा कोपिन ओछे
2: हजुर किने झोकोलाई नि छाबा छाबा छाबा मारे डिजाइन गहना चैदी म बिस्या वा चुवल तुई बिस्या रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दुकान पोखरा महेन्द्र पुलारी खोऊ चु दुकान पोखरा महेन्द्र पुलाई विशाल बजार गेट गलो धिताई पालिखे चोकै यावै क्यार मोहै
1: जगा मात्र आङी रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकाने घिस शाखा पोखरा महेन्द्र पुलारी अन्नपूर्ण सुपर मार्केट आडरे मुहै आसुम ल्यादो
2: समुदाय रवा ताक रिवा ज्याला जाति कृवा छतैरा नत खैमा बिलन चन्न यामो
1: तोय निल तुई बिस्या रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकान महेन्द्र पुल पोखरा सम्पर्क 061-580-815 98-560-35-815 प्रोप्राइटर दशरथ सुनार
2: छतैरा त तान नि भिम्द
3: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोज त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउँ है रूपाकोट।

0: छ।
1: हो त
0: हत्तेरी हो नि, बरु आजै गइहालौ। पिस्टल आयुर्वेद केन्द्र, पिस्टल हस्पिटल, तेस्रो तला, गैरापाटन 4, पोखरा। फोन 061 450 424, 9804 46525।

सेल्स सर्विस स्पेयर पार्ट्स सबै को सेवा सहित एलआई मोटर्स विस्तृत जानकारी को लागि एलआई मोटर्स बुद्ध चोक पोखरा फोन नम्बर 0165274256537526।

0: तुम ऐसी ही कोई भी लड़की नहीं हो। कैसे एक्सप्लेन करूं कि तुम स्पेशल हो?
1: ये भी मैं बताऊं, मैं कैसे स्पेशल हूँ ये मुझे बताना है? तो तुम क्या करोगे? रोल क्या है तुम्हारा?

बापू मैं जा रही हूँ, जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है, चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी। आपकी सुजाता।

0: Sare Toki Nagari Pokrama Metro City Hospital Prali Silzanasok Pokrali Bivina Kisimka Bisasagya Chigisak Sewarku Upachar Lyaku Zan Karigaraudasho
1: Hamra Sewaharu
0: Heart Journey Nasatata Merudandarog
1: General Surgery Sabai Prakarka Operation Sewa
0: Mirgaula Tata Mutra Rog Euro Surgery
1: Pet Chati Mutu Thyroid Tata Madhumiharu
0: Neuro Surgery Sewa
1: Bal Rog
0: Nakkan Tata Ghati Rog
1: Manasik Tata Isnayu Rog
0: Prasuti Tata स्त्री रोग
1: छाला यौन तथा कुष्ठ रोग
0: नेत्र रोग
1: दांत तथा मुख रोग
0: क्यान्सर रोग दूरबीन र लेजर प्रविधि प्रयोग गरी गरिने विभिन्न अपरेशनहरू अत्याधुनिक माइक्रो डिफ्राइडर प्रविधि द्वारा नाक कान तथा घाँटी रोगको अपरेशन मासिक नियमित खोप सेवा
1: 24 घण्टा एम्बुलेन्स इमर्जेन्सी अत्याधुनिक प्रयोगशाला तथा फार्मेसी सेवा
0: सुविधा सम्पन्न आईसीयू सेवा
1: डिजिटल एक्सरे
0: सिटी स्क्यान सेवा
1: भिडियो एक्सरे इकोकार्डियोग्राफी
0: Endoscopy, ECG, EEG, PTA,
1: Physiotherapy, Uroflowmetry,
0: Chemotherapy,
1: Surachit Garbhavatan Sewa,
0: Whole Body Checkup Health Package,
1: Metro City Hospital Prali, Pokhara 8, Srijanachok, Kaski,
0: Phone 061-572-648, 572-849.

0: आजदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट, त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउँ है रूपाको।
1: टाइम चेक।
2: यति बेला रातिको 10 बजेको छ।
3: यस टाइम चेक का प्रायोजक रूपाकोट ज्योति सुनचादी दुकान महेन्द्र पुल पोखरा।
4: किन्नुस अब ढुक्कले सुनका गहना, गए अब रसायन केडियम राख्ने समय।
5: 93.4 रेडियो अन्नपूर्ण 93.4 रेडियो अन्नपूर्ण 93.4